0: छोड़ो
1: देखा दिलन तोड़ो
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

0: I just messaged him and I told him, thanks, Dad. I call my eldest brother Dad.
1: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ याद

0: Jesus, Lamb of God, bring the time check in Guyana. 19 hours 50.
1: नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब
0: चाहे राह दूर मींस टू थीव्स